0: कार्यक्रम कृषि का कुरा
1: व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन का लागि सचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम
0: रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङको सहकार्य
1: कार्यक्रम कृषि का कुरा

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: Or Sang the FM, Ponchana Bemegahertz.

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, दो साल से मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 जिसका इंतजार भारतीय सिनेमा और पूरी दुनिया कब से कर रही थी, वो फिल्म आज हो चुकी है रिलीज। और रिलीज होते ही इस फिल्म ने मचा दिया है धमाका। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने रिलीज होते ही काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहला रिकॉर्ड तो ये फिल्म हो रही है 11,000 स्क्रीन पर रिलीज। दूसरा ये दोस्तों कि इस फिल्म को सभी साइड से पॉजिटिव रिव्यूज मिलते आ रहे हैं और ये फिल्म तोड़ने वाली है सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से बाहुबली और एवेंजर जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज के दिन की ऑक्यूपेंसी से भी ये फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90% की ऑक्यूपेंसी ली है। जी हाँ दोस्तों, साउथ में इस फिल्म ने 90-95% की ऑक्यूपेंसी ली है। वहीं नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी डल थी, लेकिन इस फिल्म के पॉजिटिव रिव्यू के बाद इस फिल्म ने अपने एडवांस बुकिंग में काफी इजाफा किया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के दूसरे दिन, तीसरे दिन के कलेक्शन और चौथे दिन के कलेक्शन काफी ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी पाई है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने 60-65% की ऑक्यूपेंसी हिंदी बेल्ट में पाई है। वहीं केरला में इस फिल्म को मिली है 90% की ऑक्यूपेंसी। तेलुगु में इस फिल्म को मिली है 95-100% की ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि वहां पर सभी सिनेमाघरों के जो शो है वो हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं। वहीं तमिल में भी इस फिल्म के जो शो है वो पूरे हाउसफुल चल रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए की हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म ने तमिलनाडु से कमा लिए थे 148 करोड़ रुपए और हिंदी तेलुगु और केरला से इस फिल्म ने कमा लिए थे 100 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर इस तरह के पॉजिटिव रिव्यू के बाद अगर ये फिल्म 500 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेती है तो ये हिस्ट्री होगी और एक रिकॉर्ड होगा जो इंडियन सिनेमा के नाम हो जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म में रजनीकांत के रोल की काफी तारीफें हो रही है। वहीं सेकेंड हाफ में अक्षय कुमार के कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफें हो रही है कि अक्षय कुमार ने एक ऐसा विलन बनकर दिखाया जो आज तक इंडियन सिनेमा में कोई नहीं बन पाया। जी हाँ दोस्तों, वहीं शंकर सर की इस फिल्म को विजनरी बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है, कि उनका विजन है जो काफी अच्छा है और यह फिल्म हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है इंडियन सिनेमा के लिए कि इंडियन सिनेमा में कम बजट की फिल्में इतना ज्यादा कमाई करती है और इतने अच्छे लेवल पर बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जहां इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में मिली है 65-70% की ऑक्यूपेंसी, तो यह हिंदी सिनेमा से कमा सकती है 35-40 करोड़ रुपए। वहीं साउथ में इस फिल्म को मिली है 90-95% की ऑक्यूपेंसी और यह साउथ सिनेमा से यानी कि तमिल में कमा सकती है 45-50 करोड़ रुपए। वहीं तेलुगु में यह फिल्म कमा सकती है 55-60 करोड़ रुपए और बाकी बचे केरला वगैरह जैसे स्टेट से यह फिल्म कमा सकती है 25 करोड़ रुपए। इसका मतलब यही है दोस्तों कि यह फिल्म अपने पहले दिन हिंदी से इंडिया से पूरा ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का हो जाएगा तकरीबन 200 करोड़, और वर्ल्ड वाइड में तो यह फिल्म ने धूम मचा के रखी है और वर्ल्ड वाइड से भी यह फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है एक दिन का वो हो चुका है 300 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस फिल्म ने बना दिया है एक रिकॉर्ड जो कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बना पाई है, वहीं इंडिया की इस कम बजट की फिल्म ने बना के रख दिया है। आपको दोस्तों क्या लगता है, ये फिल्म अपना लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ का कमा पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
1: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुनरिकाश मंगला हे तनु हरि। लो अब दुलाले दुलाले सिन्दूर हाल्ने।
2: ओए अस्मी, हेर्न दुलाले लगाएको सुनको चुरा, सिक्री, बिन्दिया, मंगलसूत्र, औठी क्या राम्रो देखिएको, झन् त्यो गलामा लगाएको सुनको रानी हार त कस्तो आकर्षक है, मेरो त मनै लोभ्यो, कहाँ बनाएको होला।
3: ल, आकर्षक ज्वेलर्समा बनाएको गहना आकर्षक हुँदैन त? मैले पनि मेरो हुनेवालालाई हाम्रो बिहेमा आकर्षक ज्वेलर्सबाटै गहना ल्याउनु भनेकी छु।
4: हामी कहाँ मेसिनद्वारा कटिङ गरिएका पुराना तथा आधुनिक डिजाइनका गरगहना पाइन्छ।
5: पसलको ग्यारेन्टी छाप लगाई गहना तथा बिल दिइन्छ।
4: जुनसुकै पसलमा बनेका गहना साटफेट तथा खरिद बिक्री गरिन्छ।
5: राशि अनुसारको पत्थरहरू र अन्य पत्थरहरू पाइन्छ।
4: कम्प्युटर तौलबाट खरिद बिक्री गरिनुका साथै मेसिनद्वारा नाक कान छेडिन्छ।
5: साथै सुनचादी सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गरिन्छ।
6: आकर्षक ज्वेलरी सुनचादी पसल, बेसीसार नगरपालिका 7, त्रिवेणी टोल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क सँगै प्रोभाइडर प्रकाश विश्व।
7: विश्वकर्मा मोबाइल 9845656233 र 9801177246।
8: आकर्षक तथा गुणस्तरीय गहना र शुद्धताको प्रतीक आकर्षक ज्वेलरी सुनचाँदी पसल।
9: ए बुढा, कहाँ जथाभावी फोहोर फाल्न लाग्नु भएको?
10: किन, सबैले त फालेका छन्, यो फोहोरको के काम?
9: यही बारीले त हाम्रो गाउँ फोहोर हुन्छ, रोग फैलन्छ र वातावरण बिग्रन्छ।
10: अब यो फोहोर के गर्ने त?
9: फोहोर छुट्याएर डस्टबिनमा हाल्ने, पुनः प्रयोग र रिसाइकल गर्ने, कुहिने फोहोर हाम्रै करेसा बारीमा काम लाग्छ नि।
10: ए हो त है, सानो प्रयासले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ, अबदेखि म सचेत भए।
11: हामी सबै सचेत भएमा हाम्रो वातावरण सफा हुन्छ, सफा गाउँ स्वस्थ जीवन।
12: सार्वजनिक हितका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक क्याप इलाका कार्यालय भुजुङ।
13: घर बनाउने त भनियो ठेकेदार साहब, तर निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने हो? बजारमा धेरै हार्डवेयरहरू छन्, अलि गुणस्तरीय सामग्री पाइने विश्वासिलो हार्डवेयर चाहिँ कुन होला है?
14: अब धेरैजनाले खोज्ने गरेको त बेसी सहर सातमा रहेको हिमालयन ब्रदर ग्रुपद्वारा सञ्चालित हार्डवेयर तथा कारखाना नै हो दिदी। फेरि त्यहाँ त विभिन्न निर्माण योजनाहरूको लागि चाहिने सामग्रीहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि, तपाईँ पनि त्यही जानुहोस् न।
15: हाम्रा सेवाहरू एमएस पाइप, फलाम, आल्मुनियम, स्टीलका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै ट्रस, ग्रिल, सटर, आल्मुनियम पार्टिसन र स्टील रेलिङका कार्यहरू दक्ष एवं अनुभवी कालीगरद्वारा प्रत्यक्ष निगरानीमा जडान गरिन्छ। गुणस्तरीय छड सिमेन्ट, इटा, रंगरोगन लगायत भवन निर्माणका सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ।
13: हिमालयन ब्रदर ग्रुप प्राली विशेषर नगरपालिका साथ युनिभर्सल चोक लमसुङ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0665209073, मोबाइल 97463061।
16: तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना।

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजीव
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिंग एफएम
4: 95 मेगाहर्ट्ज
5: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
6: राष्ट्रको शान किसान
5: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स

0: extreme energy drink.
1: के तपाईलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छ? त्यसो हो भने अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच गरी अनुभवी फार्मेसिस्टद्वारा औषधि वितरण गरिने प्रकाश फार्मेसीलाई सम्झनुहोस्।
2: हामी कहाँ अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच, अनुभवी फार्मेसिस्टद्वारा औषधि बिक्री वितरण तथा परामर्श, नेबुलाइजर सेवा, घाउ ड्रेसिङ, संगिनी सुई उपलब्ध

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी